0: स्वरा आपण ट्यून केले रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हॉट टचिंग
1: ट्यून इन एनीवेअर रेडिओ मनभावन 90.8 FM

0: तुमच्या प्रतिक्रिया कळवण्यासाठी या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज किंवा कॉल करा. संपर्क क्रमांक 92 84 49 94 33. ऐकत रहा रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

वाणी श्रोताओं, कबीर साहब हमें एक दृढ़ चेतावनी देते हुए कहते हैं, मन के मते न चालिए। तुम कभी भी अपने इस चंचल मन के मते, यानी इसकी राय, इसके बहकावे या इसकी इच्छाओं के पीछे मत चलो। जो मन कहे आँख मूंद कर उसे सच मत मान लो। छाड़ी जीव की बानी, और इस जीव यानी अज्ञान के कारण पैदा हुई जो तुम्हारी पुरानी आदतें हैं, जो वासनाएं हैं, उनका पूरी तरह त्याग कर दो। तो इस मन को वश में कैसे करें? अगली पंक्ति में कबीर कताई के शिल्प से एक अद्भुत रूपक देते हैं। ताकू केरे सूत जू, ताकू का अर्थ होता है तकुआ, यानी चरखे की वह सुई या धुरी जिस पर धागा लपेटा जाता है। कबीर कहते हैं कि जैसे सूत काटते समय धागा बाहर की तरफ खींचता चला जाता है, लेकिन बुनकर उसे फिर से उल्टी अपूठा आनी, यानी उल्टा घुमाकर वापस उस तकुए के केंद्र पर लपेट देता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन संसार के विषयों और चिंताओं की तरफ बाहर भागे, तो विवेक की उंगली से उसे पकड़ो और उलटकर वापस अपने भीतरी केंद्र, अपने आत्मस्वरूप पर ले जाओ। यह दोहा प्रत्याहार और उलटबासी साधना का मूल आधार है। महर्षि पतंजलि ने भी योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है। मन का स्वभाव ही बहिर्मुखी होना है। यह हमेशा संसार को देखना चाहता है। कबीर यहाँ उलटी अपूठा आनी कहकर चेतना को अंतर्मुखी करने का निर्देश दे रहे हैं। जैसे सूत को तकुए पर वापस न लपेटा जाए तो वह बिखर कर उलट जाता है और नष्ट हो जाता है, वैसे ही अगर मन की ऊर्जा को वापस भीतर नहीं समेटा गया तो वह संसार के प्रपंचों में उलझ कर नष्ट हो जाएगी। कबीर समझा रहे हैं कि मन का निग्रह उसे मारने से नहीं, बल्कि सजगता के साथ उसकी दिशा को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देने से होता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से बैठकर अपने विचारों की दौड़ को देखिए। आज सुबह से हमारे मन में हमने क्या क्या करवाया, कितनी बार इसने हमें गुस्सा दिलाया, कितनी बार व्यर्थ की चिंताओं में डुबाया। हम कब तक इस मन के इशारों पर नाचते रहेंगे? आज कोशिश कीजिए इस चरखे के विज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। जब भी आपका मन किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या लालच के जाल में बाहर की ओर भागने लगे, तो वही ठहर जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और सजग होकर उस विचार को वापस अपने भीतर मोड़ दीजिए। उस राम नाम के सुमिरन में मन को लगाइए जो इसका असली केंद्र है। जब आप मन के मालिक बन जाते हैं तो जीवन में एक परम शांति और मोज का जन्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।